이사야서 다한 적이 보글로이나나 나세기디 야카이롤 산독자바 로신저리 나세기 야카이롤기 세사키바생디 아한바다 고이점 프렘칸타나 삭바 베나 아니슈바다 올 마니푸르 뮤직 애소시에이션기 세사크바생나 삭바 रतन कुमार लोयतोंग बमना सैरिंगबा इमालेबाक पुखुरुम जबैसे अहुम सुबदा रेशमा सेख सानी न सकबा राजेन खुमुकचमना सैरिंगबा लाइशोनीसे मरी सुबदा पुख्रमबम ब्रिल्ला न सकबा तबानु खुराइजमना सैरिंगबा लाइशोनीसे अरुइबा लाइशोनीसे गी सैसखिबा तखेलमबम बंदाकिनी देवी सैरिंगबा सुरजित अचोम

खंगन जबा अमा आकाशवाणी इम्फाल की म्यूजिक ऑडिशन की दमक ऑनलाइन की खुदांग दा फॉर्म थाजिन बिखी बसिंग दा खंगन जरी मधुदी बी दगी बी हाई ग्रेड काना नबगी ऑडिशन लाख लिबत जून की तांग निपान दगी हवजरगनी मरमसिना मे कुन मापन फाव की मनुंग दा इंडियन म्यूजिक सेक्शन दगी अयुक की पुंग तरा मथोई दगी नुंगथिल की पुंग मरी फाव की मनुंग दा एमिट कार्ड लौबी रनबा खंगन जरी

ताबिरी असैबगी सैरोलदा हाउबम मीरावाई देवी थौरम लांथोपीखिबा तंफामणि लुक्राम थौरम पुथोकबा हाइक्रुजम देवेंद्र थौरम असी ताहन जखिबगा लोइनना खोंजल नाचोम संदोकचबा लुइसिनजरी।

मखल मथिल की थरम कया लेपतन तहनजरीबी एफ एम संगाई चैनल दगिनी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफम असिद संदोकचरी अतोप मंगाल चकप हराब थरम ए सी ई आर टी की इजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट की तेंबांग लोनना पुथोचबनी।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: मखल मथेल की इसे क्या संदोकतुने ताहनजरी बसे आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल की गुड मॉर्निंग मणिपुर की थोरमनी

0: जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी इम्फाल हौजेक पुंफम मसिदा संदोक चरी सेसक पमगी इसई नसी मयाम द लांथोकतुना तहन जगदौरी बासी महाकी इसगी सुरत ताबदा मयाम की पुनिंबु सिंगसिन बगमलीबा ओइनाम स्वामी कुमार सेसक पसी दगिनी सैसकपना असुम सकली नुंशी सक्तम उनिंगबना गाउवी हे नुंशी न पाउ तानिंगबना लांगतक नहीं।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मथंग खुदोल तमजली मोनाली ठाकुर ने शक्पा गीत।

0: या इब्राहिम, हे खुदा की नबी।
1: कई दौरे सना तुम थब याद रबरा।
0: सामले बाक्षी देह क्लाक पदगी अल्लाह की थौजाल दगी नरन न थुम तना निंग थौरेन अमगुम न पान बीरे अतुबु अतुबु वाटलीबदे
1: वाटलीबदे कोनुंगुम लब संगाय सिदा नचा मतंग न कप लावगी खोंजेल दुदनी हाइबा आइसु खंग मसिमदि अल्लाह की हुकुम नतना ननिंग थुंगन मंगम बहाय बदुमदि ओइद्रे दना सारा
0: मतम बाक मचा मतंग न निंगाई तो बिना फंजद्रबनु पिया दुगी पोपसमन

0: nakut adu nakut adu tunglom da pirak lokadai
1: ngai bikho baba jan khum khut asidi pun biranu maram di isana yaning da duna pulhali bani haiduna aina phangjagada ba mahai nekibu allah na han than ki bai amukta da charam se tup na valen bi ko baba jan ai leimai da hi thajari
0: हे अल्लाह हे अल्लाह नन्नै पाय चाहनी मक्पु कबूल तौबी लौबी बिस्मिल्लाह हे अल्लाह अकबर हे करिनो करिनो थांग सिदि चंग देना बिस्मिल्लाह हे अल्लाह अकबर हंदक सु चंद्रे करिनो करिनो मसिदि
1: इपाई बुंगो नसाद सोक्तनब थांग अदो थौहंद्र माले थांग अतुम्बा मतोंदुना थिंजिलगा चरम असिबु कखथपियु
0: अदुमना तौरगे अदुमना तौरगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर हंदक सुसंग देना करिनो मसिकि थांग सि लंगथोक खगे लंगथोक
2: नंग नसागि मंगकता थांग दुना मुक्तंग इनबदा इस्माइल की तुबु ममतंग हेक तत्हनबदा थांग नंगबु नोरोकता दोजक की मई द थादगनी हाइना चामरक चामरक अल्लाह ना थांग दुद थिंगली
0: कनागी खोंजेन ओ जिब्राइल लाकली माले
2: इब्राहिम दुम्बा को वशामा सर्ग जगी पुरक तुना ननाक तलाईरी बदु येंगु
0: कदाए कदाए ओ दुम्बा सिदी फजक रेदा
2: नंगी कुर्बानी वो अल्लाह ने कुबूल तौबी खे याबी खे इस्माइल की मुहत्ता दुम्बा दुगु ओइन लेन दुना कुर्बानी तौरो इब्राहिम
0: हे अल्लाह पुन मक नहा की थौरांग नी
2: हयेंग मई सिंग लैरी फौवा मुसलमान सिंग ना थौदो कसि उनिंग सिंग हौननवा मान मान गम जवा साबु लेन दुना Urwani pangtok lasano ngasidagi nangbu khalilullah allah yachan mamaru khaiba mingthol lase pirawani ibrahim
0: allahu akbar allahu akbar allah di punna maktagi chawi
1: la ilaha illallah ala natana lapada mati chawalaitre
2: wallahu akbar Allahu Akbar Walillahil Ham
0: Hey Allah Aibu mai pak sabang amhan biro
2: Ibrahim Nanna hajira mama machawu hundok pikhi mama phammasiu Makka kaurabani Maphammasida khana kaba kauwa अल्लाहु निन्ना संगमसाओ
0: नहा कि नया थंगु पांगथोक चबंग मन बिउ ननाइबु
2: नंगना अल्लाहु की जबा अमदि कठोक पंगमवा हजिरा गी सबर खांग मकनबा अमदि नसा इस्माइल गी हाय इन मपुन मक्कासिउ निंग सिंग हौननावा मफम पुन मक्तगी मुसलमान सिंग नमकाद लातुना ताइबंग सिन लैरी फौबा हर्ज गी थोरम पांगथो हौरस अनु
0: पुन्नमक अल्लाह गी अपाम बनी
2: हजिरान खांग खिवा अवाबा अमदी मशा गी दमकते सिंग थीबदा सफा दगी मरवा फोबा हंगत धंदा चेन खिबबु निंग सिंग हौने नबा हर्ज गी जाति खुदिंग मंगासु थौरम ओइना सफा मरवा हंगत धंदा चेलक लस अनु
0: पुन्नमक नहा की हेन फद्रब नया थंग निने मपु
2: हयेंग संसार सिन लैरी फावा मालेंग मफम खुदिंग द लैबा मोशन मान सिंग ना माई कई सिरा निपान दगी मखोय मखोय गी लैफम सिंग दुमत्त दगी अल्लाह बु खुरुम जवा नमाज पांथोक मतम दा खना कवा कौवा निंग संग अदुदा मकोक लैता ना ममाई ओन सिंदुना खुरम जफम ओयर लसनु

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯂꯥꯏꯚ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8798-803-293 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 8798-803-293 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ꯫

0: अरे मैं मौसी चेको कुन बसुन योय नदी तार बुजा काकाय आमला बु ओला मांग याम थाजे बको
1: ओ ओ
0: सिजे फजरिंग ऐ हे इंग ऐ तो इंग ऐ सुदा लाइव बगे मैं होय करी होय आम तो यिंग हम निजा बा देखो ना जब आओ रो हफ्ते निंगबा
1: Binotana taram na upi bedu akashwani imfal bu yam nungaize aduna soidana maki yam na yang na mafam duda koi koi na chaturai sei khanba aduga atopa thoram sing lakpa yanabagi ayabaduma koi mathak thongba sing dagi su lojaraga thabak oina paithokpa ngam paikhatpa ngamba oige haiba oizage haiba wafam duma su binota gi mafam da thamjari haibi haibi koi matam dilai selectre ten tak na haibi ro
0: अकोजी फार्मर में आम सारी वो कोलियो में आम वो सुना रहे वाली जो सुना रहे का तुम कहीं तो उसको तो फन निंजे फायदा
1: होय होय होय मतलब मक्सू पंखों पंगंबा ओय मिनरसी हाय वो आफम सिगलो इन्हें ना थागर परफॉर्म दोक चली
0: मैं थम जा रहा क्या थैंक यू
1: थागर चली

धन्यवाद मेरीना। नमस्कार और खुरम जरी दोस्तों, मैं निंगथौ खोंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित संगाई चैनल में। दोस्तों, आज आप सभी को चांद मुबारक हो। ईद का यह प्यारा त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और शांति लाए। ईद मुबारक। आज गीतमाला में सुना जाए कार्यक्रम सदाबहार गीत। सुनते हैं ये पहला गीत फिल्म दीदार यार से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और धुन प्रदान किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सुना जाए अगला गीत जमीन आसमान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार अनजान और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

सुना जाए आशा भोसले की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत फिल्म इजाज़त से, गुलजार के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाई। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन द्वारा।

अब सुना जाए किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गीत। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम। गुलशन बावरा की शब्द रचना को संगीत से सवारा राहुल देव बर्मन ने।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत सुना जाए बड़े दिल वाला फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है और राहुल देव बर्मन का संगीत

इस गीत के साथ आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है. ट्यून करते रहें संगाई चैनल, साथ ही स्वस्थ और सुरक्षित भी रहें. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। फिर वही मीठी शाम की दस्तक, फिर वही दिन से रात का मिलन, फिर वही गीतों का सफर, फिर वही मेरा सतरंगी शहर और इनके साथ फिर वही मैं कुसुम। फुर्सत मिले तो दिल की धड़कनों को सुनना, हर एक दिल की पुकारों में जन्मों का प्यार छुपा होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है ये गीत जो हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

सौ साल पहले ऐसी ही एक रात थी और रात के स्याह आंचल पर लिखा था कोई मोहब्बत का अफसाना। वो हर्फ अब सितारे बन गए हैं। देखो आज भी सितारों में लिपट कर आती है रात, पलकों पर ख्वाबों की महफिल सजाती है रात। सुकूने दिल सुकूने जहां है रात की ये तन्हाई, स्याह आंचल में जिंदगी समेट कर लाती है रात। ये रात हमें याद दिलाती है वो सब जो हम दिन के उजालों में भूल जाते हैं। याद दिलाती है किसी का प्यार, किसी का इंतजार, किसी का चेहरा, किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत, और फिर दिल चुपके चुपके गुनगुनाने लगता है ये गीत।

देखिए प्यार की कहानियों में सिर्फ महबूब को सलाम ही नहीं होता, यानी मिलन की खुशी ही नहीं महकती बल्कि जुदाई के गम भी सी सकते हैं। ये सफर आसान राहों सा नहीं होता बल्कि उतार चढ़ाव से भरी पगडंडियों जैसा होता है। दरअसल मोहब्बत की एक फितरत होती है, ये गुलाब की तरह कांटों में खिला करती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अहले दिल जो भी बात कहते हैं, कोई राज़े हयात कहते हैं, हाय वो दौरे इश्क जब आंसू दास्ताने हयात कहते हैं। जी हाँ, मोहब्बत के सफर में जुदाई का मौसम भी आता है, और जब ये मौसम आता है ना तो दिल से एक कसक सी उठती है और ये नैना सावन भादों बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है फिल्म महबूबा का ये गीत। आइए सुनें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800011

साथ 800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हर सिंगार मेरे यानी कुसुम के साथ। 28 मई की ये रात यूं लगता है कि दिन भर के अपने ताने बाने को समेट रही है। आप भी जिंदगी की उलझने सुलझा रहे होंगे, है ना। ये जिंदगी भी ना रोज एक सुंदर सपने की तरह आती है और शाम ढले मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाती है। हम बस देखते ही रह जाते हैं। गुलजार साहब लिखते हैं कि कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। कहीं पर वो ये भी लिखते हैं कि जिंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते घर होते लिबास और बदल लेते कमीजों की तरह। साथ ही जिंदगी से गुजारिश करते हुए गुलजार साहब ये भी लिखते हैं कि ऐ जिंदगी गले लगा ले। फिल्म सदमा का ये गीत आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में।

तह जिंदगी गले लगा ले और आसान कर दे सारी मुश्किलों को. काश ऐसा होता है ना. लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और. जिंदगी चाहती है एक दायरे में बहना, लेकिन ये जो दिल है ना, ये उन दायरों को, उन सीमाओं को तोड़ देना चाहता है. वो एक अनजानी सी प्यास, अनजानी आस के पीछे भागता जाता है, भागता जाता है. वो चाहता है वो सब कुछ पा लेना जो कहीं ना कहीं हमारी पहुंच से परे है. जिंदगी के इस फलसफे को फिल्म रजनीगंधा में गीतकार योगेश बड़ी ही खूबसूरती से बुनते हैं. आइए सुनें.

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:10 पर गीत मेरे मनमीत लेकर मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल आइए जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत के सफर पर आज मैं हूं आपके साथ कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

फिल्म मन की आंखें का ये गीत आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म कुदरत का गीत परवीन सुल्ताना की आवाज में। साथियों, जाने वाले कभी कभी लौट कर नहीं आते। आज मशहूर शायर बशीर बद्र साहब ने इस फानी दुनिया से रुखसती ले ली। उनके जाने से दिल की धड़कनों के गीत मानो खामोश हो गए हैं। वो भले चले गए, लेकिन वो अपने शेरों में हमेशा गुनगुनाए जाएंगे। जब भी उनके शेर कहीं कोई भी पढ़ेगा तो वो हर कहीं बोल पड़ेंगे। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसके अलावा बशीर बद्र लिखते हैं कि मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होठ रख देना, मैं जब सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। आइए उनकी याद में सुनते हैं फिल्म ममता का ये गीत।

फिल्म लैला मजनू का ये गीत आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अगला गीत लिया है हमने फिल्म दिल एक मंदिर से, लता मंगेशकर की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

प्यार में सारा आलम खोना एक तरफ और प्यार को निभाना दूसरी तरफ, इसीलिए तो शायद बशीर बद्र साहब ने लिखा होगा कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हाँ, मगर मिला करो, है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये रात, ये जिंदगी गुजर जाए और बातें अधूरी ही रह जाए। कुछ ऐसा ही कह रहा है ये अगला गीत फिल्म नवरंग का।

फिल्म ठोकर का ये गीत आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म अभिमान का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ये प्यार भी अजीब शय है ना, लोग जिंदगी हार जाते हैं। बशीर बद्र साहब ने क्या खूब लिखा कि दुआ करो कि मैं एक उम्र तक उसे चाहूं, वो जिंदगी जो मेरे नाम उसने की है अभी। अगला गीत लिया है हमने फिल्म धरती कहे पुकार से, वहां मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगो से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के अध्यक्ष संजय गोविंद ने कहा कि लाउडियम और आसपास के क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और ये एकता आगे भी कायम रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Union Home and Corporation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week.
4: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The Demographic Change Committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
3: Mr. Shah recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. He highlighted his supreme sacrifice and lifelong dedication to the motherland. Prime Minister Narendra Modi yesterday met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. The longest-serving chief minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation in the governor's office in Bengaluru yesterday after a breakfast meeting with his cabinet colleagues. Addressing the media persons later without naming D.K. Shivakumar, he asked the governor to invite the CM-designate for taking up the mantle of chief ministership in the state. The governor, who is on tour, has to return to decide on the resignation submitted by Siddaramaiah. Eid ul-Azha, the festival of sacrifice, was celebrated with religious fervor and due reverence across the country yesterday. The devotees offered Eid prayers in Eidgahs and mosques in the morning. Later, they exchanged Eid greetings. In Delhi, main Eid prayer congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Hazrat Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level review meeting at the CBSE headquarters in New Delhi to review issues related to the evaluation and post-result processes of the CBSE Class 12 examinations. During the meeting, the minister directed officials to take all necessary measures to ensure that issues faced by the students are resolved in a timely, transparent and student-friendly manner. Mr. Pradhan reviewed the progress of post-result services with a focus on strengthening student support systems, improving the evaluation and monitoring framework, enhancing the CBSE digital platform and making examination-related services more accessible and efficient for students. Reiterating that students' interests remain the government's foremost priority, the minister assured that strict action will be taken against any lapses and stated that no negligence will be tolerated. The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। निशिगंधा सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि तहजीब, मोहब्बत और इंसानी रिश्तों की नरमी का एक पूरा दौर हमसे विदा हो गया। पद्मश्री बशीर बद्र साहब ने उर्दू गजल को महफिलों से निकालकर आम दिलों की धड़कन बना दिया। उनके अल्फाज में ऐसी सादगी थी जो सीधे रूह तक उतर जाती थी। उन्होंने टूटन को भी इतनी खूबसूरती से लिखा कि दर्द इबादत सा लगने लगा। मुशायरों की वह गरमामयी आवाज, वह लहजा, वह अपनापन अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। उनकी शायरी ने पीढ़ियों को प्रेम, संवेदना और रिश्तों की अहमियत सिखाई। आज अदब का आकाश कुछ और सूना है, मगर उनके अशार हमेशा रोशनी की तरह हमारे बीच रहेंगे। बशीर बद्र साहब को आकाशवाणी की तरफ से, हमारे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उर्दू साहित्य का ये सितारा कभी भुलाया नहीं जा सकता।

है बेरुखी का सारा हिसाब कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब हमारे हिस्से में भी जवाब कम निकले हमारे हिस्से में भी जवाब कम निकले वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले वो कह न पाए वही उम्र भर कसक बनकर जो कह न पाए वही उम्र भर कसक बनकर लबों से कम मेरी चुप आंखों से गम निकले मेरी चुप आंखों से गम निकले कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब मेरे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले मेरे हिस्से में भी जवाब कुछ कम निकले और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है मेरा साया

सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना जो रह गया हिसाब बाकी, फिर मिलना पूरी करनी है हर मुराद, फिर मिलना न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, फिर मिलना अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघल कर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली है। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार को लेकर समझौते के मसौदे पर सहमति बनी है। हालांकि इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए बिना किसी रोक टोक के खोल देगा और वहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को 30 दिनों के भीतर हटाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काजल, आवाज है आशा भोसले की।

ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो, उसे भूलने की दुआ करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। अरब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है राजा और रंक और आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकाल

0: ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डरमुर मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमरीकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparedness for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harshit Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Shah said that Narendra Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards, he said. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The longest-serving chief minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation in the governor's office in Bengaluru yesterday after a breakfast meeting with his cabinet colleagues. Addressing the media persons later without naming D.K. Sivakumar, he asked the governor to invite the CM designate for taking up the mantle of chief ministership in the state. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level review meeting at the CBSE headquarters in New Delhi to review issues related to the evaluation and post-result processes of the CBSE Class 12 examinations. During the meeting, the minister directed officials to take all necessary measures to ensure that issues faced by students are resolved in a timely, transparent and student-friendly manner. The National Testing Agency, NTA, has released a revised examinations date and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations for admissions to programs across central and private participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of the next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Zaha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. Giribala is Twisha's mother-in-law and a retired district sessions judge. The arrest was made yesterday in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. A CBI team reached Giribala's home at around 10:30 last morning. They questioned and searched the premises for nearly 7 hours. She was finally arrested at 5:10 in the evening. She has been taken to a hospital for medical checkup. After that, she will be produced before a CBI court. A day earlier, the Madhya Pradesh High Court had cancelled her anticipatory bail. The court, in its 17-page order, said that given the seriousness of the case, the evidence and the stage of investigation, granting her relief was not appropriate. Twisha Sharma died under suspicious circumstances on the night of May 12 in the Katara Hills area of Bhopal. Her in-laws claim it was suicide, but her family has accused her husband and in-laws of murder. India Meteorological Department, IMD, has forecast that heatwave conditions are expected to abate over many parts of northwest India beginning yesterday. Talking to Akashvani News, IMD scientist Dr. Akhil Srivastav said that people will experience significant relief from prevailing heatwave conditions across Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during the next 3 days. He said that the change in weather conditions is due to western disturbance and the possibility of moderate to severe thunderstorm activity accompanied by squally winds is likely. Two Indian wrestlers advanced to the semi-finals of the Asian Under-17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam yesterday. In the men's 45kg Greco-Roman category, Sachin Kalappa Shirole defeated Sami Ahmed Al-Obaid of Jordan 11-4, while in the 110kg category, Rudra Kiran Nimhan beat Korea's Siuk Musim 8-0 in quarter-final matches. Prime Minister Narendra Modi congratulated Indian wrestlers for their outstanding performance at the 2026 Under-23 Asian Championship held in Da Nang, Vietnam. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एतबार, आवाज है आशा भोसले और भूपिंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था। कहीं तो होगा, गुजर गया तो अब कहाँ है। कहीं तो होगा, कहाँ से आया किधर गया है। ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। और अब आइए सुनते हैं एक गजल, आवाज है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये बताना हम नहीं भूल सकते कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यह कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Shah said that Narendra Modi government is expanding world-class sports infrastructure

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय समय हुआ है रात्रि के 3:10। मैं पंकज आपके साथ इस शांत रात में, लेकिन अब शुरू होता है हमारा ही शो और इसमें आपके लिए मैं पूरे घंटे प्ले करूंगा ड्यूएट्स गाने। तो शुरुआत करते हैं दो गानों से और फिर इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं।

आज के धूम धड़ाके वाले गाने के सिंगर्स में जो है पुराने जमाने के गाने के जो है डाई हार्ट फैंस हैं और उन सिंगर्स को तो बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करते हैं और हो भी क्यों ना, आखिर अपने गानों से इन्होंने कमाल जो कर दिया है। हमराही शो की इस आधी रात में आपने बेताब मूवी का गाना सुना, शब्बीर कुमार और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके लिए इस पूरे घंटे प्ले करूंगा पुराने डुएट्स गाने, यानी बॉलीवुड के गोल्डन एरा के पुराने गानों का मजा लेंगे मैं और आप। तो अपने दिन की सारी बेकार की बातों को भूल जाइए जिन्होंने आपको टेंशन में रखा, थका कर रखा, और बस आप इन गानों का मजा लीजिए और मुझ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो मैं बातें आपसे करूंगा और आपके लिए जो गाने मैं प्ले करूंगा बस। और तो हाँ, बस इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, बाकी मैं सोच लूँ और कौन कौन से गाने आपको अच्छे लगेंगे वो गाने आपके लिए मैं निकाल लेता हूँ। अभी के लिए

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आंगन की गली फिल्म से ये गाना था और जितनी अच्छी ये पुराने गाने हैं उतनी अच्छी ये पुरानी फिल्में भी हैं। और मैं मेरा तो हमेशा एक से एक सीन रहता है कि फ्राइडे रात को या फिर सैटरडे रात को जो है आराम से अपना सारे काम खत्म करके उसके बाद फिर कोई पुरानी मूवी ऑनलाइन देखना, और सच में बहुत मजा आता है। 2-3 घंटे तो इतने प्यार से बीत जाते पता ही नहीं चलता। खैर मैं हूं पंकज आपके साथ हमराही शो में, और जब ये गाना चल रहा था ना कि सैया बिना घर सुना, मुझे ऐसा लगता है रिश्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते ना और उस समय कोई अगर आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए तो सच मानिए उस हाथ को ना थाम लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए। क्योंकि देखिए रिश्ते बहुत मिल जाएंगे लेकिन रिश्तों में प्यार मिलेगा या नहीं ये मुद्दे की बात है। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और अगर आपको प्यार मिले तो खुद को खुश नसीबों में गिन लीजिए।

देवान फिल्म का गाना आपने सुना पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, अजीज कैसी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये गाना चल रहा था, एक बार सोच रहा था कि आज रिश्ते नाते जो हैं वो तिनकों की तरह बिखर रहे हैं और जाने मन में बसा प्रेम जो है वो लोगों के कहां खो गया है। अहंकार जो है संबंधों में दीमक का एक तरह से काम करता है और वैसे भी रिश्ते नाते में कहते हैं ना कि जो सह गया वो रह गया। हर बात पर रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं होता क्योंकि कुछ खट्टी बातें ना सिर्फ मन को कुछ देर परेशान करने के लिए लोग कह जाते हैं। उनका उद्देश्य आपको खोना नहीं होता बल्कि समझाना होता है कि भाई जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझो। हाँ, तरीका थोड़ा तल्ख हो जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, कहते ना कि हर बात पे मुंह बना लेना जरूरी नहीं है। हमराही शो में मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और जब भी कभी आपको अपने साथी पर तैश आए ना तो ये भी जरूर सोचिएगा कि यही इंसान है जिसने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ भी किया है। तो बाकी आप जो है ऐसे ही आप गाने सुनते रहिए। और हाँ, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले घंटे सुबह 4:10 पर। हमरा ही शो का जो ये है ये आखिरी गाना है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा सुबह 4:10 पर अरुणिमा शो में। तो अभी के लिए आप इस गाने का वो एंजॉय करिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी बस ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वे कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थंगडी स्थित सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र को भी संबोधित करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Keralam from today till 31st of this month. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he'll attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Devanagari, Karnataka. Tomorrow, Mr. Radhakrishnan will participate in the Statehood Day celebrations of Goa at Panaji and will also visit CSIR, National Institute of Oceanography in Goa. The Vice President is also scheduled to inaugurate the Sri Industrial Park at Belthangandi and visit the Sri Chetra Dharmsthala Manjuthana Swami Temple in Karnataka on 31st of this month. Later on the same day, he'll visit Keralam to inaugurate the 140th Foundation Anniversary celebrations of Deepika Malayalam Daily at Kottayam. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate, COET UG, 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of the next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, coet.nta.nic.in. American and Iranian negotiators have agreed on the framework of a memorandum of understanding for a 60-day ceasefire extension, but the deal still requires final approval from President Donald Trump, U.S. officials have confirmed. The agreement, first reported by U.S. media outlet Axios, would bring de-escalation to a conflict that has rattled global energy markets and disrupted shipping lanes since Iran closed the Strait of Hormuz earlier this year. Under the draft MOU, the strait would reopen to unrestricted commercial traffic, meaning no tolls and no interference, and Iran would be required to clear all mines it deployed in the waterway within 30 days. In turn, the U.S. would proportionally lift its naval blockade on Iranian ports and issue sanctions waivers allowing Tehran to sell oil freely. The MOU also includes a formal Iranian commitment not to pursue a nuclear weapon. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. Giribala is Twisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made yesterday in Bhopal. A CBI team reached Giribala's home at around 10:30 last morning. They questioned and searched the premises for nearly 7 hours. She was finally arrested at 5:10 in the evening. She has been taken to a hospital for medical checkup. After that, she'll be produced before a CBI court. Twisha Sharma died under suspicious circumstances on the 9th of May 12 in the Katara Hills area of Bhopal. Her in-laws claim it was suicide, but her family has accused her husband and in-laws of murder. In Jammu and Kashmir, security forces yesterday launched a fresh fire assault and multiple grenade launch MGL attacks on specific suspected terrorist hideouts as the anti-terror operation in the dense forest of Dorimal area of Gambhir Mughal area of Rajouri district entered its sixth consecutive day. Akashwani Jammu correspondent reports that according to preliminary reports, 2 to 3 Pakistani terrorists, including a commander, are believed to be hiding in the area. The fresh assault came a day after Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma visited the area and reviewed the ongoing anti-terror operations in the dense forest. The fresh fire assault was launched on the suspected hideouts amid narrowing down of the cordon to eliminate terrorists hiding in the region. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. While addressing an international security forum in Russia yesterday, Doval said responsible nations have to evaluate their choices. And that is the end of this news bulletin.

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूं आपके साथ और अब शुरू होता है हर सुबह की तरह अरुणिमा कार्यक्रम। और अब मैं आपसे मिलता हूं दो गानों के बाद, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गाने के साथ।

जगजीत सिंह जी की आवाज में ये सुकून देने वाली गजल आपने सुनी और फ्रॉम द एल्बम तुम तो नहीं हो इसे लिखा था बशीर बद्रू साहब ने। इस गजल की एक लाइन जो है मेरे दिल को बहुत ज्यादा छूती है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है। हाय, और आप समझ ही गए होंगे कि मैंने बशीर बद्रू जी की लिखी हुई इस गजल की दो लाइनों को क्यों कहा। कल यानी 28 मई 2026 को भारतीय शायर बशीर बद्रू जी ने दुनिया से विदा ले ली। एफएम गोल्ड पर भी आपने आज उनके बारे में बातें सुनी, उनकी लिखी हुई गजलें सुनी और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। वैसे तो देखिए, जीवन का एक दिन समापन होना ही है हम सबका, और कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, कोई अचानक जाता है, लेकिन जब ऐसे शायर संसार से रुखसती करते हैं तो मलाल तो होता ही है। एक से बढ़कर एक गजलें लिखी बशीर बद्रू जी ने। 91 साल की एज में बशीर बद्रू जी जो है डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने फिर कल अपने घर पर अंतिम सांस ली। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके साथ अरुणिमा शो सुन रहे हैं आप। आकाशवाणी परिवार भी बशीर बद्रू जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी लिखी हुई गजल की ये लाइन भी मुझे बहुत गजब की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जुबान सब समझते हैं जज्बात की। खैर, और अब बशीर जी की लिखी हुई इस गजल का लुत्फ लीजिए तलत अजीज जी की आवाज में, और इस गजल के बाद फिर उसके बाद आप एक गाना सुनेंगे। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ सिर्फ अरुणिमा शो में।

रूपतिना मस्ताना मूवी से ये गाना था। किशोरदा और लताची की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। सबको पता ही है कि कल यानी 28 मई को मशहूर और हर दिल अजीज शायर बशीर बद्र जी हमारे बीच नहीं रहे और मैंने भी आपके साथ उन्हें अभी याद किया। आप सुन रहे हैं अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। बशीर बद्र जी की लिखी हुई हर गजल जो है वो बहुत शानदार और अपने आप में मायने लिए हुए है। एक गजल है ना, आपको उन्हीं की लिखी हुई सुनाता हूँ जिसका टाइटल है यूं ही बेसबब ना फिरा करो। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनके। बहुत अच्छी है, बहुत डीप मीनिंग्स हैं इसके। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो, मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, कभी हुस्ने पर्दा नशी भी हूं जरा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन संवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो, ये खिजां की जर्द सी शाम में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है इसे आंसुओं से हरा करो, नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर नहीं, उसे इतनी गर्मी ये शौक से बड़ी देर तक ना थका करो। कौन ना फिदा हो जाए इस पर। और मुझे तो सबसे बहुत प्यारी जो मुझे लाइनें लगी वो तो ये थी कि मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कहां सुन पाते हैं लोग दिल की बातें। खैर अब सुनिए विशाल भारद्वाज की आवाज में ये गाना, इसे जो है बशीर बद्र जी ने लिखा था। तो आप सुनिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हसीना से यूं मुलाकात

लाइफ की सिचुएशंस को बस इतना भी गंभीर नहीं लेना चाहिए जितने में हम अपने जो है जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा वैसे मैंने आपसे शायद पिछले घंटे आपसे बात की थी कि पता नहीं मैं आज कौन सी मूवी देखने वाला हूँ ऑनलाइन फ्राइडे, तो अभी तक तो मैं कंफ्यूज था लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अजनबी 1974 में रिलीज हुई इसी मूवी को आज रात में देखूंगा। आज या तो आज रात को देखूंगा टाइम मिला तो, बाकी कल देखूंगा। पुरानी फिल्मों का जादू सच में एक अलग ही होता है। और ये इस गाने में आपने देखा कि जीनत अमान जी जो है वो कितनी बला की खूबसूरत लग रही है। खैर मैं हूं पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है अरुणिमा। जीवन जो है सुख दुख का संगम है और सुख का मजा भी थोड़ी कठिनाई झेलने के बाद ही आता है, जैसे तेज गर्मी के बाद बारिश का। वैसे भी दिल्ली में जो है थोड़ा सा मौसम, हल्का सा मौसम जो है ठंडा हुआ है अभी तो थोड़ा, एज कम्पेयर टू अदर डेज आज थोड़ा सा हल्का मतलब थोड़ा सा ठंडा है। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, आप ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, मैं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभिमान फिल्म से लता जी की आवाज में ये गाना था, एस डी बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य जो होता है हमारे तन और मन की खुशी होती है। हम गाने भी मन को खुश करने के लिए सुनते हैं और मन खुश तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। वैसे इस समय बाहर की ताजी हवा से भी हमारा शरीर जो अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप घर की खिड़की या अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो विंडो ओपन करके आप बाहर की ताजी हवा का मजा ले सकते हैं। वैसे भी आज मौसम जो है थोड़ा सा भी ठीक हुआ है, हल्का सा ठंडा हुआ है। बाकी अगला शो भोर सुहानी होगा यानी सुबह 5:10 पर, और इन गानों के बाद हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगा 5:10 पर। अभी के लिए सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के अरुणिमा शो का ये लास्ट गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वो कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन कल पणजी के गोवा में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड्डी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान

0: में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। हांगकांग में 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, "The dedication to the tribal community is truly commendable." He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of the tribal communities and their empowerment. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harf Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, "Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with the global standards." In line with this, review meetings were held in Ahmedabad regarding the progress of sports infrastructure and related projects, he said. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate COET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month.

आसमान में भी धीरे धीरे उजाला हो चुका है। सुबह के 5:10 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूं आपके साथ और भोर सुहानी शो अब शुरू होता है। दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं।

जिंदगी में जब कोई पसंदीदा शख्स आ जाए ना तो मानो जैसे घुटन से भरे कमरे में ठंडी ताजी हवा आ गई हो, ऐसा होता है प्रेम का जादू। वैसे गानों का मैजिक भी मूड बदलने का काम करता ही है। और ये गाना था फ्रॉम द मूवी किसी से ना कहना, आशा जी की आवाज में। और पता है आपने कभी नोट किया होगा कि सुबह सुबह जो गाना आप सुनेंगे ना पूरा दिन आप वही गुनगुनाएंगे, और अगर नहीं भी गुनगुनाएंगे ना अंदर ही अंदर वो गाना तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसे गा नहीं लेंगे। ऐसा होता है। खैर सुबह हो गई है, भोर सुहानी शो शुरू हो चुका है मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। सुबह के 5:22 हो चुके हैं और मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूं आसमान जो है काफी मतलब अब तो काफी विजिबल हो जाता है गर्मी में तो अब उफ।

तो खैर बहुत ज्यादा अपने चरम पर है, लेकिन अभी जो है अभी प्रेजेंट में मौसम जो है थोड़ा ठीक है, इसलिए आप जब भी दिन में बाहर निकलें तो अपने साथ ठंडा पानी या नींबू पानी पीते रहने के लिए जरूर ले जाएं। और आपके लिए मेरे पास बर्फ से ठंडे गाने जिन्हें सुनकर आपको ठंडक मिलेगी, तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल।